हसमुख मंडालिया के स्वर में ये गुजराती पारंपरिक भक्ति रचना अभी आपने सुनी। आइए आप सुनते हैं काकोली मुखर्जी के स्वर में संत कबीरदास की ये भक्ति रचना।

काकोली मुखर्जी स्वर में संत कबीर दास की भक्ति रचना अभी आपने सुनी। अब सुनते हैं अंजना चटर्जी से संत सूरदास की ये रचना।

इसी के साथ भक्ति संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। ये है आगम डीटीएच चैनल, हर दिन हर पल भारतीय संगीत। ये आकाशवाणी मुंबई की प्रस्तुति थी।

0: चरण
1: कनक भूषण मूल बेटी मरियो

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम 2400 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत. हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप सुनेंगे राग बिलासखानी तोड़ी पर सितार वादन. कलाकार हैं स्वरूप कुमार बोस. आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं पिंटू दास. तो लीजिए प्रस्तुत है राग बिलासखानी तोड़ी पर सितार वादन. कलाकार हैं स्वरूप कुमार बोस.
2: This is Ragam 24/7 on DTH Anytime Indian Music. This morning we present Hindustani instrumental recitals. Listen first to a sitar recital in the rag Bilashkhani Todi. Our artist is Swarup Kumar Bose. Accompanying our artist on the tabla is Pintu Das. Listen now to the sitar in the rag Bilashkhani Todi. Our artist, Swarup Kumar Bose.

0: अभी आप राग बिलाशखानी तोड़ी पर सितार वादन सुन रहे थे। कलाकार थे स्वरूप कुमार बोस। आपके साथ तबले पर थे पिंटू दास। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम को जारी रखते हुए लीजिए अभी पेश है राग कोमल आशाबरी पर वायोलिन वादन। कलाकार हैं तरुण कुमार चक्रवर्ती। आपके साथ तबले पर हैं देवोजीत बंदोपाध्याय। तो लीजिए प्रस्तुत है राग कोमल आशाबरी पर वायोलिन वादन। कलाकार हैं तरुण कुमार चक्रवर्ती।
1: You were listening to a sitar recital in the rag Bilashkhani Tori. Our artist was Swarup Kumar Bose. Accompanying our artist on the tabla was Pintu Das. This is Ragam 24/7 on DTH, Anytime Indian Music. Continuing the concert, we now present a violin recital. Listen to a violin recital in the rag Komal Asavari. Our artist is Tarun Kumar Chakraborty. Accompanying our artist on the tabla is Deepjit Bondopadhyay. Listen now to the violin in the rag Komal Asavari. Our artist is Tarun Kumar Chakraborty.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप राग कोमल आशावरी पर वायलिन वादन सुन रहे थे। कलाकार थे तरुण कुमार चक्रवर्ती। आपके साथ तबले पर थे देवोजीत बंदोपाध्याय। ये आकाशवाणी कोलकाता केंद्र की भेंट थी। ये है रागम 2400 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत।
1: यू वर लिसनिंग टू अ वायलिन रिसाइटल इन द राग कोमल असवरी। Our artist was Tarun Kumar Chakraborty. Accompanying our artist on the tabla was Debjit Bondopadhyay. This program was earlier recorded and produced in the studios of All India Radio Kolkata for Ragam 24/7 on DTH Anytime Indian Music.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: श्रोताओ नमस्कार, रागम 24/7 DTH चैनल कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत। सुनते हैं तबला वादन, कलाकार है मुकेश जाधव। प्रारंभ में आपने तबले पर प्रस्तुत किया ताल, तीन ताल सुनते हैं। आपके साथ हारमोनियम पर है उदय शाहपुर।

घिना धाड़ धा घेड़े नग तेरे केट घिना धाड़ धा घेड़े नग तेरे केट घिना धाड़ धा केट घिना धाड़ धा तेरे केट घेड़े नग तेरे के केड़े नग तेरे केट तक तेरे केड़े नग तक तेरे केट तेरे केट घिना धाड़ धा तेरे केट घिना धा धा तेरे केट घेड़े

अभी आपने सुना तबले पर ताल तीन तार और अब सुने हैं तबले पर ताल छपताल, कलाकार मुकेश जाधव। आपके साथ हारमोनियम पर है उदय शाहपुरकर।

अभी आपने सुना तबले पर ताल एक ताल। कलाकार थे मुकेश जाधव। आपके साथ हारमोनियम पर संगति कर रहे थे उदय शाहपुरकर। ये आकाशवाणी केंद्र की निर्मिति थी। रागम हर पल हर समय आपके साथ।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये आकाशवाणी का रागम चैनल है. प्रस्तुत है रोहित प्रसन्ना का बांसुरी पर बजाया राग देश. विलंबित रचना एक ताल में और द्रुत रचना तीन ताल में निबद्ध है.
2: This is the Ragam Channel of

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये आकाशवाणी का रागम चैनल है. प्रस्तुत है रोहित प्रसन्ना का बांसुरी पर बजाया राग देश. विलंबित रचना एक ताल में और द्रुत रचना तीन ताल में निबद्ध है.
2: This is the Ragam channel of

0: रागश्री में अभी आपने सुना डॉक्टर विवेक करमहे का गायन। डॉक्टर विवेक करमहे अब प्रस्तुत करने जा रहे हैं राग बागेश्री। विलंबित रचना एक ताल में है जिसकी बोल है कौन गत भई। द्रुत रचना भी एक ताल में निबद्ध है जिसकी बोल है बेग बेग बेग बेग आओ।
1: You were just listening to Dr. Vivek Karmahe's rendition in Rag Shri. Dr. Vivek Karmahe is now going to present Rag Bageshri. The Vilambit composition is in Ektal with the lyrics Kaun Gat Bhai. The Drut composition is also set to Ektal with the lyrics Beg Beg Beg Beg Aao.

0: डॉक्टर विवेक करमहे का गायन राग बागेश्री। डॉक्टर विवेक करमहे अपने गायन का समापन राग सोहिनी से कर रहे हैं। मध्य लय तीन ताल में निबद्ध रचना के बोल हैं, देख देख मन ललचाई, और द्रुत तीन ताल में निबद्ध रचना के बोल हैं, रंग न डारो श्याम जी।
1: That was Dr. Vivek Karmahe's vocal rendition in Raag Bageshri. Dr. Vivek Karmahe is concluding his recital with Raag Sohini. The Madhyalay composition set to Teen Taal has the lyrics Dekh Dekh Man Lal Jai. And the Drut composition set to Teen Taal has the lyrics Rang Na Daro Shyam Ji.

0: डॉक्टर विवेक करमहे के द्वारा प्रस्तुत ये था राग सोहिनी। आपके साथ हारमोनियम पर संगत कर रहे थे रविंद्र किल्लेदार और तबले पर निशांत शर्मा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति थी। इसके साथ ही आज की अखिल भारतीय संगीत सभा संपन्न होती है।
1: That was Rag Sohini presented by Dr. Vivek Karmahe. Accompanying him were Ravindra Killedar on harmonium and Nishant Sharma on tabla. This program was presentation of Akashwani Indore. With this, today's national program of music comes to an end.

अगली प्रस्तुति है कजरी। बोल हैं धीरे धीरे से झुलाओ सुकुमारी सिया हो। द नेक्स्ट प्रेजेंटेशन इज कजरी।

अब आप सुनेंगे दादरा मिश्र गारा, बोल हैं सुध बिसरत नाही। नाउ लिसन टू दादरा मिश्र गारा।

आप सुन रहे हैं हिंदुस्तानी उपशास्त्रीय गायन, कलाकार हैं नैना देवी। यू लिसनिंग टू हिंदुस्तानी लाइट क्लासिकल वोकल रिसाइटल बाय नैना देवी। ये है रागम, हर पल हर समय भारतीय शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम को जारी रखते हुए अब आप सुनेंगे ठुमरी भैरवी, बोल हैं हंस हंस गरबा लगाए। नाउ द आर्टिस्ट रेंडर्स ठुमरी भैरवी।

अभी आप सुन रहे थे हिंदुस्तानी उपशास्त्रीय गायन। कलाकार थी नैना देवी। संगत कलाकार थे तबले पर इस्माइल दद्दू खां और सारंगी पर सरदार खां। हर पल हर समय रागम के लिए ये थी आकाशवाणी के भोपाल केंद्र की भेंट। यू विल लिसनिंग टू हिंदुस्तानी लाइट क्लासिकल वोकल रिसाइटल बाय नैना देवी। द अकंपनीमेंट वॉज प्रोवाइडेड बाय इस्माइल दद्दू खां ऑन द तबला एंड सरदार खां ऑन द सारंगी। This program was contributed by All India Radio Bhopal for Ragam 24/7, an exclusive Indian classical music channel.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम हर पल हर समय भारतीय शास्त्रीय संगीत. अब आप सुनेंगे हिंदुस्तानी शैली में बांसुरी वादन. कलाकार है अभय फगरे. राग है धनकोनी कल्याण. विलंबित गत एक ताल में और द्रुत गत तीन ताल में निबद्ध है. संगत कलाकार है तबले पर सलीम अल्लाह वाले. दिस इज रागम 24/7 एन एक्सक्लूसिव इंडियन क्लासिकल म्यूजिक चैनल. नाउ लिसन टू हिंदुस्तानी बांसुरी रिसाइटल बाय अभय फगरे. द रेंडिशन कमेंसेस विद द राग धनकोनी कल्याण. द अकंपनीमेंट हैज बीन प्रोवाइडेड बाय सलीम अल्लाह वाले ऑन द तबला.

आप सुन रहे हैं बांसुरी वादन, कलाकार हैं अभय फगरे। यू आर लिसनिंग हिंदुस्तानी बांसुरी रिसाइटल बाय अभय फगरे। यह है रागम पर हर पल हर समय भारतीय शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम को जारी रखते हुए अब आप सुनेंगे अभय फगरे से बांसुरी पर राग मालकौंस। विलंबित गत एक ताल में और द्रुत गत तीन ताल में निबद्ध है। कंटिन्यूइंग द बांसुरी रिसाइटल बाय अभय फगरे, यू विल लिसन द राग मालकौंस।

अभी आप सुन रहे थे हिंदुस्तानी शैली में बांसुरी वादन। कलाकार थे अभय फगरे। संगत कलाकार थे तबले पर नफीस अहमद। हर पल हर समय रागम के लिए ये थी आकाशवाणी के भोपाल केंद्र की भेंट। यू आर लिसनिंग टू हिंदुस्तानी बांसुरी रिसाइटल बाय अभय फगरे। द अकंपनीमेंट वॉज प्रोवाइडेड बाय नफीस अहमद ऑन द तबला। दिस प्रोग्राम वॉज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय ऑल इंडिया रेडियो भोपाल फॉर रागम 24/7 एन एक्सक्लूसिव इंडियन क्लासिकल म्यूजिक चैनल।

बजाऊ नी बगा बबरी धा

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये आकाशवाणी का रागम चैनल है. प्रस्तुत है स्वप्नमय बैनर्जी का सरोद पर बजाया राग बसंत मुखारी. विलंबित और द्रुतगत तीन तालमिनी बद्ध है. तबले पर आपकी संगति की है सुखमय बैनर्जी ने.
2: This is the Ragam Channel of All India Radio Delhi. We now present for you a sarod recital by Swapnamay Banerjee. Accompaniment on the tabla is provided by Sukhmay Banerjee. Listen to Rag Basant Mukhari, in which you will hear the alap followed by the vilambit and drutgat set to Tinta.

0: अब स्वप्नमय बैनर्जी का सरोद पर बजाया राग बसंत मुखारी सुन रहे थे। तबले पर आपकी संगति की थी सुखमय बैनर्जी ने। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली की प्रस्तुति थी।
1: दैट वॉज राग बसंत मुखारी एंड विद दैट वी कम टू द एंड ऑफ द सरोद रिसाइटल प्रेजेंटेड बाय स्वप्नमय बैनर्जी, अकॉम्पनीमेंट ऑन द तबला प्रोवाइडेड बाय सुखमय बैनर्जी। This program was a presentation of All India Radio, Delhi.

Sabaniza. Sabaniza. Sabaniza. Sabaniza.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel।
1: श्रोताओ नमस्कार, रागम 24/7 DTH चैनल पर भक्ति संगीत के कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं समर्थ रामदास की भक्ति रचना से, जिसे गाया है कुमुदिनी पेड़नेकर ने।

कुमुदिनी पेडणेकर के स्वर में अभी आपने समर्थ रामदास की भक्ति रचना सुनी। कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं जय श्री कुलकर्णी के स्वर में संत चोखा मेळा की भक्ति रचना।

जैसे कुलकर्णी के स्वर में संसोखा मेणा की भक्ति रचना अभी आपने सुनी, आइए अब सुनते हैं दीपक पाटेकर के स्वर में समर्थ रामदास की ये भक्ति रचना।

समर्थन आपकी भक्ति रचना अभी आपने सुनी दीपक पाटेकर के स्वर में। कार्यक्रम में आइए अब समूह स्वर में सुनते हैं संत भानुदास की भक्ति रचना, जिसके संगीतकार हैं बाल माई।

संत भानुदास की भक्ति रचना अभी आपने समूह स्वर में सुनी, जिसके संगीतकार थे पाल माली। कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं संत तुकाराम की भक्ति रचना सौमिक शाह के स्वर में।

सौमिक शाह के स्वर में संत तुकाराम की भक्ति रचना अभी आपने सुनी। कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं कुमुद कुलकर्णी के स्वर में संत तुलसीदास ने रची ये हिंदी भक्ति रचना।

कुमुद कुलकर्णी के स्वर में संत तुलसीदास की भक्ति रचना अभी आपने सुनी। कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं चंद्रकांत काळे के स्वर में संत एकनाथ की ये भक्ति।